0: सुनिए ना, आइए हम लोग आने में 10 बजे तक था।
1: इस समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको 5 गते ता कुनाको लाइन जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री गर्ने ठाउँ
0: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

पहाड़ हिमाल भरी सेती काली तारी सातौ चंडी गरम आलम परिक्रमा गरी संस्कृति को जगेरनारा कृषि व्यापार शिक्षा सबै तीर छाई रहोस्।

0: नेपाल को सर्वाधिक बिक्री होने बजाज मोटरसाइकिल को अपग्रेड में पाने हो अनबीटेबल कैश डिस्काउंट अनि अनबीटेबल एक्स्ट्रा वैल्यूएशन सजिलो 36 महीना को ईएमआई में साथ ही फ्री एक्सेसरीज उपलब्ध।
1: मेला हुने मिति यही साउन 10 गते देखि 16 गते सम्म। स्थान गल्याङ तिनसिन नेपानी। सम्पर्क मोबाइल 9846096248 र 9251220199।

0: सुल्टी
1: वो सुल्टी नहीं
0: सुल्टी हमला समझे रा अब हेरो यहाँ समाऊनु भाई कई गारो पीरो नमानु है
2: किन्हें गारो मानु रा सुल्टी नहीं अब समझे रा उनका मैं मात्र तो ला
0: फेरी फेरी पनी समझे रा उनला
1: भाई ऐसे नहीं समझे ला आप ताकि रुपनी बैठ सके ना सुला सुल्टी

0: पहले हम लोग ग्यारह बजे के
1: इस समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच घरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।